0: सोलु एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: सन्चे सोलु एफएम स्टुडियो टाइम
2: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलू दुदकुन नगर पालिका पास सोलू खुम्बु
3: Wherever you are, stay connected with the wider world with the BBC World Service. Now streaming on Zeno.fm and the Zeno Radio app.
4: Where do we begin?
3: With international news you can trust, BBC News.
5: Journeys into the heart of global events.
3: And voices from around the globe.
6: The whole region is in the grip of a severe water crisis. And I'm here to find out what.
3: The BBC World Service, right here on Zeno.fm and the Zeno Radio app.
7: अञ्जना महर्जनसँगै मदन पौड्यालको स्वागत छ काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियो स्टेशन र उज्यालो अनलाइनमा एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ
8: आज 2083 साल साउन 12 गते मंगलबार सन् 2026 जुलाई 28 तारीक असार शुक्ल पक्षको चतुर्दशी तिथि
1: काया कैरन का साथमा
8: किसान पाइप प्रोडक्ट्स प्राली
1: राष्ट्र कुसान किसान
8: अ कम्प्लीट पाइपिंग सोल्युसन्स
7: काया कैरन शुरू गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट

0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुन
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुन एफएम 101.2 MHz
2: तथा ज्वालामाई अफसेट प्रेस सोलुदुत्कु नगरपालिका 5 सोलु खुम्बु।

0: उज्जवल एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागी हाम्रो अभियान
1: टाइम चेक सोलु एफएम स्टूडियो टाइम
2: लाविन एम बिहान को 11 बजे
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुकुन नगर पालिका 5 सोलु खुम्बू
3: आदरणीय श्रोताबृन्द तपाई अहिले सुनिरहनु भएको छ सोलु एफएम सोलु एफएममा अब तपाईले सुन्न सक्नुहुन्छ विभिन्न नेपाली लोकगीतहरू

0: सोलु एफएम 101.2 MHz उज्जवल भविष्य को लागी हम अभियान
1: संचय सोलु एफएम स्टूडियो टाइम
2: एल्बम मध्यान को 12 बजे
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुर्गुन नगर पालिका 5 सोलु कुम्बू
2: तो समय किसान पाई प्रोडक्ट्स प्राली को हो
1: राष्ट्र को स्नान किसान
2: अ कंप्लीट फाइटिंग सॉल्यूशंस।

0: नागरिक सहायता कक्ष संचालन अदली सेवा ग्रही महानुभाव यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रभावी सेवा प्राप्ति को सहजीकरण को नागरिक सहायता कक्ष संचालन कर उक्त कक्ष निःशुल्क सेवा प्राप्त होने स्पष्ट होने सेवा प्राप्ति को नागरिक सहायता कक्ष में संपर्क राख् अनुरोध कर सेवा प्राप्ति में कसई को प्रलोभन न करी आपको सेवा लिना हार्दिक अपील करद सेवा प्राप्ति में कई गुनासो आए में गुनासो सुनी अधिकार कार्यालय प्रमुख सुनवाई संपर्क राख् सकू
1: कोशी प्रदेश सरकार आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय विराटनगर
2: आर्थिक वर्ष 2084 का प्रदेश संचालन गरिने आयोजना कार्यक्रम को प्रस्ताव आवेदन संबंध में कोशी प्रदेश योजना आयोग
3: आयोजना को वर्गीकरण आधार तथा मापदंड निर्धारण और आयोजना दल व्यवस्थापन कार्यविधि 2082 बंदन स्थानीय तह प्रदेश कार्यालय आर्थिक वर्ष 2083 में कार्यान्वयन होने आयोजना कार्यक्रम के संबंध में इस आयोग मिति 2082 साल चैत्र 9 गति आयोजना दल सूचना प्रणाली में प्रस्ताव आह्वान भएको हुनाले 2083 साल वैशाख 5 गति घटना प्रणाली को प्रयोग मार्फत आयोजना प्रस्ताव बना हुआ कृषि प्रदेश सरकार मार्फतका कार्यालय स्थानीय तहहरूलाई जानकारी को लागि यो सूचना प्रसारण गरिएको छ। साथ ही आयोजना प्रस्ताव संबंध में स्थानीय नागरिक ने संबंधित स्थानीय तह संस्था को कार्यक्षेत्र रहकर स्थानीय तह तथा आयोजना को संबंध कार्यक्षेत्र में रहकर प्रदेश कार्यालय में संपर्क राख अनुरोध कर प्रस्ताव आह्वान संबंधी सूचना विस्तृत आयोग को वेबसाइट ppk.kc.gov.np हेन सभी में इसी सूचना मार्फत अनुरोध कर
2: कोशी प्रदेश सरकार प्रदेश योजना आयोग विराटनगर नेपाल
0: नागरिक सहायता कक्ष संचालन होने संबंधी सूचना
3: अदली सेवा ग्रही महानुभाव यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रभावी सेवा प्राप्ति को सहजीकरण को नागरिक सहायता कक्ष संचालन कर उक्त कक्ष निःशुल्क सेवा प्राप्त होने स्पष्ट होने सेवा प्राप्ति को नागरिक सहायता कक्ष में संपर्क राख् अनुरोध कर सेवा प्राप्ति में कसई को प्रलोभन न करी आपको सेवा लिना हार्दिक अपील करद।

मेरे आंगन पर निभाई होशियारी अपना जोखिम टाड़ने भाई वारी पारी झाड़ी बूटी।

0: सोलु एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागी हाम्रो अभियान
1: स्टूडियो टाइम
2: टाइम
0: चेक को साथमा न्यू स्टार डिजिटल कलर ल्याब तथा ज्वालामाई अफसेट प्रेस सोलु दुर्कुन्द नगरपालिका 5 सोलुखुम्बु

0: सोलु एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागी हाम्रो अभियान
1: टाइम चेक को साथ
2: डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय अफसेट प्रेस सोलु दुर्गुंडा नगर पालिका 5 सोलु खुम्बु।

0: next to your heart. Solar FM 101.2 MHz.
1: DWR Nepal News Room, Jo Margo Darshan Radio La, Desidile Jai Masi. क्यों मोबाइल दाखिल सिंकिंग दुप्पी पर लासन नीचे की तेंदु प्लामो के निबिन लियामो के निब्राबिन
2: संगमले दमजेने से नौसारिंग अपनों जिकमचे गेटी पर आरिंग पंच किस्म लाम गेटी वाला ले जिकमनिंग लाम वो तो दासे चिंगो चला दिनी बाएं तब तुझे खाजो को नमसा मातुं लाऊं नेमरा हिं तब तुझे साथे ले मिलमुता मिं तब जैसा क्या छड़की लखपा काम बुझी छत्तों के वाम किंगे जाप सो जीवे तब इंजी छड़की नमजोता नौसान तमाम छड़की वो पाना थिंदो हाको सो जीवे तब सरके नमन से खाजो को सो जीवे दाकुची गोला फार से छोंग जीवे खाला से तो मत होने जगह चेवती नेना समलाम मेरे रंग जीवे मध्य दास तमसे लाम खाका से नहीं जमनो तब उत्तरां दिखाती कश्य नहीं जबक तब की जिला चिरोला नियोजन के तमाम ये मैं टॉक्सिक और हाथों बोसों बाय बाय की चिंगिंग बचे ये सही की थिरला खाजी तोला चिंगी हुए दिवे ये मुझे साथे की ये मुसीतान जिस सितान दे ये सही ची की सब के ने यूनचुर कुला नियोजन ना ये सही खजी की नार सही ये बुक सन हुए तयार शो दाकु मलाना देनी दाकु ताम की कोलाम आरा वोरा ताम किरो किरे की दिक्कता से निजी ये मुरो वसनाम इति खादवा कर मुझीताओ कश्य ने मुरो वसनाम इति लुकी पालोगा दीताओ मन जो उनसम लगाने ताम निम्नों गासों सीजें छोरा की दिदासी की लेमो लेमो सब समाधान ये जीवे मन छोरा माँ इसों सीजें सिंहना चिकित्सा निंदर जीवे सिंहना चोई कौन जाके छेद ऐसे की ताम सुन न मुहिम ये सही की दुमला तीन निमला सिंगुलाव नीनो इन राज की तरुणसं अलातेरे की मुदुनो ये बुनु मोलम दिवानो रुंसं तिवाम ये मलुंगा लुंबा जी नार्दे थुनी जुबु जी नागदे की थुनो उतरा नी जुबलाम देवी लोनी दो आने ये रसलम तमाय हो दीजिए हम बच्चे और छोड़ जुबे तमाय इन जाजी होगी की बाम चितमा तिवालाम इबु से जी नखजी चिगलाम असुविधा दो आने को आरक्षित जमने माँ जबुन जुबलाम तमाय तीजी नींदा तो नो ये सही सीजन दो गीताम लोकता जी सही नोटो आइन ये सही की नित्वालाम न्याजी क्या इन सीजुलाम कतानी होए किसी दुबे दिनी होए ये तीजी कौन जलाम भंगासी जीना होए कोई की त्योला सुख जाने सुनी होए सिर तामलाम नेमा जाने नीना ऐसा दाबुमुला देवी दाबु खड़ा तामना आरो उड़ा चिरो न्याजी मंसर जब चाला के वातं निलकबा चाला तो थिंदो नीतिर मुला ताम चिरोबलाम सो किचु बुआसीने ना संतानी हुए किसी की मुद्दे किसी मुलाकासं तुपर पेर मचाला मैंने किसी ना संजी लेम जाने लगा कीना जाओ मैंने तुझे ने दरबुजी लगलाम नीजी चंद्र की सितलाम मन लगवा जाऊं तो जुए इंजू खराजी रंग नीताम ना कोनी सिंधादे उन्तु जुए खराजी लगाजी मुला जाओ संजी जिंगी ताम ताम किलवा सोली उन्जो तमा खराजी त्योला नीजी खराज जो कले त्योला साबला दादे जो नो जो मुंसे बिजी चोला नीताम लानी खेलक पाम जोने जान जुए जिले कौन जगे चेंगे ना फंजी छोकला कोजना मुंसी जाओ तामी तमा तो केरी सो पला दाबु घरे नार तमाम दाबु घरे ये जितो ताम जीवे दाबु मुला उतराम दिखपला जोक्तो बो तमा घरे दिखपाने सर फक्तो मु दिला में निवे दाबुला समा जोबला मुंसा ले मु जोबला दाबु घरे ये क्या इंसुर ताम ला चिचुला दिगी लागा जीवे तमा दाबु जी कौन जोक जी शाह तमा तम्जे थोसी जीवे दिगे चेंगे थोजी ना निवे तमा लोन जल थाम ला कतां वाय कोई जी सुना वाय जी छोरा मरा चुनी वाय जी जीवन जी कोई जी जाओ मिंसी ने सी चुक जीवे की मिंसी कोई जी चंगा तुम मिंसी जाने तमा ती जुगा ना दो चुक जीवे तमा मिंसी तीवे जी चुरुगा सेम बोलने जोने कोई जी सेम ये चुक जीवे तमा तिला ची ये चुक जीवे तमा मिंसी ये चुक जीवे तमा के मलाम ये चुक जीवे चुरुगा छोवाय जी दुगे पर जी थोड़ी जोगो लागाइन जी आरी ये सब बोला निदब्ते रे ताम जी थोड़ा सा इन कौन जगी चुरुगा दुख सुनी Katanawe, Tayashok, Dagumulabini, Dagwitamaro Rajiro, Tamachetu, Tamajati Kawasini, Dagwana Santomo, Chalamula Rakabri Ninamwe, Dagwala Turgi to Yesu Christ, Inkarazala Dinamwe, Koykaraji Tavla, Dinamu Rakamaji Tavla, Yunamwe, Dimitrajasu, Nimurtam Inji, Chalaji Shadikpatiwa, Jau Inji Sugojiji, Nishan Chalaji Matakba, Jau Inji Sugojiwe, Churunponda Umbojiwe, Churunjiji Inji Inji Tumbojiwe, Tamati Yosei Konjoki, Koyinye Bojinye Tumla, Tamashawala, Chalaji Dikbiji Shawa, Koyji Janamuwe, Dikikwanjaki Lani Namuwe, Koyji Churunga Sejal Tamti, Tena Wodu Tamwe, Tiki Tala Koyji, Tam Chinamuwe, Tiki Tiasura Jani, Chalaji Tumjakula, Kam Chalaji Tala, Chalanjiru Dogoe, Nini, Udurumin, Nun Chalaji Konjakula, Koyji Sula Lasun Sijin, Diki Solem Juju, Koyji Churunga, Yesu Christ Tasin Shah Binawe, Sopalana Yesajin Narchakila, Vitar Tama Tumuwe, Dinarji Dukshini Sijawe, Chalaji Sendir Sinan, Muru Su Usinan, Diki Kadawa Kormudito, Matsenga Kaji Kola Nasan Tumin, Tamadi Talmala Bobo Pala, Sase Kormutama Lamutumuwe, Dilamijin Nabuni Jani, Kadamu Pala, Diki Kole Kole Jani Mesanga Jini, Inne, Yesu Christ Kursa Pitnasun, Dagi Diki Laja Chitula, Dagi Sendir Sinan, Muru Su Dikwati Tokla, Kursa Koyji Tal, Koyji Dagu Salana Nasun, Dagi Diki Mandiki Tokla, Yesu Christ Kumla, Chetal Chetuna Binasun, Kwanya Pogi Turtama, Diturna Chabi Yola, Koyji Dito Dagu Salajanasun, Diki Tonga de Kain Sijin, Dagu Lema Jani Panda, Yesu Chengala Binangwen, Diki Bokti Manasa Dagu De, Kuni Wanamuin, Di Kwanja Chuanesur, Dagu De Kuni Oin, Di Dagu Diki Shawa, Infinity Laganesur, Dagu De Kuni Oin, Tama Diki Bumiki, Rosama Yusini, Tama Dagu Siki, Kwanja Dagu De Pala Malani, Dagwala Mani Tinutama, Matawa Mani Yanamuri, Rosa Yesu Krishna, Dagu Jaw Maji Jisanizin, Dagu Tengi Insuri, Kadawa Kormutama, Koji Pani Dumujiwe, Sayin Kwanja Yasaji, Nimaji Rishmasuni Nasum, Rosam Tra Insini, Tamakala Ninjin, Chama Dilumbi Lamila Machala Tiwa, Sabla Nijidong, Nun Chiragi Ninjin Jasin Sijin, Tamakova Jasin Sijin, Tamashiranga, Chiji Chigidong, Gitam Lumba Lumba Tiwala, Nitola Sase Lamoy, Gata Dibiji Zamulingi, Nitola Kirtu Mussolinoy, Tamakola Nata Mussolinoy, Dagucham Mutikojui, Daguti Gavi Kutu Dikojui, Tamakoko Kurunga, Yuji Nasana Dikodu, Yuji Nasana Dunju, Nagado Chikojui, Tamadiki Dishokala, Kamanjara Bojiwe, Mindiki Rishi Dakbala, Mala Nijirwe, Tiki Dakbala, Yesu Krishi Dati Nimudwe, Ditam de Changwing, Tamadi Zambuling Lam, Churun Kene Osanam, Ditam de Udana Changwing, Tukane Dikbiji Najitama, Zambulina Kara Muji Shokala, Tamalo Mula Dakbiji, Christian Tama, Chira Nasan Udunitua, Wajima Jai Udunitin Lam, Sogni de Rojiwe, Tamasopa Sopanjo, Niji Palap. Tama, Tama Dagui Tam Duang, Araura Silpsini, Siga Tam Lanakin Tong, Jazoku Chalayue, Tamakoji Dishinam, Hakwasunan Tukiji, Dagbutriki Mulajini, Koji Nasana Nini, Koji Binamu, Dagui Chitangi Chimla, Nini Getubla Tama, Tama Tilangi Dekibla, Tama Ninuki Tokla, Dabu Koji Niki Tokla, Nasan Tongu, Diki Felengin, Dagui Mulam Tukiri, Yasukani Sigan Binway. Chiragi Dilmuji Lemnam Tam Tiwam, Sitin Boji Dong, Jiran Tam Konjoki, Penny Zangan Dong, Kumuninu Tamam, Koyi Shah Nintuo, Mutiji Toklam, Kuala Jiran Tam Muninamuin, Yesu Krishna Kumara Toklam, Diki Janamuno Namuin, Kokaragi Toraju Tamala Lemo, Tamashiab Nasa Dalo, Tamadrajana Konjoki Mulam, Nikimula Mopojiwe, Dukora Koyi Toklam, Muninamuri, Tamahudra Jani, Diki Koraji, Dibuja. Jadi kalau kita mula, घुम्ने ओदो मतपतामा क्योकोल कुनै पनि कुदो जुटो नासम मिठो जिबे तमा लेमा जेनिङा नेमा चुदी खाइ इन्सिसिन नुन खेर कि तुमा छि इन्सिसिन जिजि जेरोना छु तुम दो छुरुन दि छिक परा मे छु खौ मुति जि नुन खेर कि कोले जि नासम तमा तन्दिले निनि खोला मा जा दि इन्सिसिन खेर कि छासे दम सिन्दो सथुक दि दो तमा छु दि कि थका ला छुरु मा छि इन्सिसिन छुरु खेर दने छु खेला दि तमा ना तुम दो तमा दि ताम तुरुन खेर बुरा वे पुगे ना इंगि सिन्दि छुरुला मुदि तमा खाम जि किलोमीटर दो मुटु गे तमा नीति नि मामला भगे यानी कदम वे जबमे कुतु मुटुआ तमा नि मांग जो वे जिगे आरी यीशु नि नंगे ढकबे ले नमला नरे चिकबरा जीवे तमा जी चो कोन जगे एसी की कोला दा बुखरे जी भगे यानी छा मिदु तमा जी उदरम कोन जगे सुंजी भरा था की बानी वे कोई जी खरे सुंजी ढकबे दिखबतां के जो खुजी दा तमा ढकबे दिखबे मंजे एसी क्रिस्ट की कुसला कुनी दूसरे ताम जी सिदां कोंदेवी किनिया नो ये एशु ये जिजाओ इंजिने सुनां सुन धक्की दिखती थोड़ा सोला ये नां सुन तमा तीजुला सो बला खो सेम में से दगा जाने नुमसे नु लाना नी लानी नां सुन तमा कोई जी धक्कला कोई जी पहने तमा चंगे लूं ने दिनां सुन नला युवा जी छह जी दुबार जुबो सितांगिन ने वाई नला युवा जी ये सितांगा सेम लगेंगे तमा ढको चोई कोंदे एशु लाम निंजे जानने गए सिरा सिरी कोंदे जी तिराम धक्की दिखतां के इंतुआ चके ले हम जोन नंगे कोई जी करा धक्के सिंगे जगह मोर दिखतिवा नानी पाल जगह स्कर्नु जोला तमा खा दवा कोंदे जोन नंगे नई योगिन जी छोरे जी दिखे कदम ओम्ये तुम जीवे तमा छोरे जी छोरे दिल्ली लगे चोरनी छोरे जी चोरी कोंदे जोला तुमने जानने गए सीसी तमा छोरे दागु मुलान दिनी धक्के तमा आरोलो शुरू मुला छोरे दिखतां किंतु अनंत तमा तमा तिलक कर्म तमा चंगे येशु दोगा चंगे जोन नंगे नाते आरी सुनने दोतरे इनो दाखु लंसा दोरा जाने मेरे छेदुगनो तेरे लटे भी दले तमा पीछे होता।

0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
2: उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो
3: डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई अफसेट प्रेस सोलु दुत्कु नगरपालिका 5 सोलु कुम्बु।

0: Soundcheck. City FM. It's studio time.
1: It's 8 p.m. को 8 बजे
2: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई ऑफसेट प्रेस सोलू दुर्गुमा नगर पालिका 5 सोलू खुम्बू।

0: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय होंडा ब्रांड की मोटरसाइकिल तथा स्कूटर अब ओखलढुंगा को मिलन क्षेत्रमा
1: का विशेषता
2: जापानीज ऊर्जा प्रणाली थप उत्पादित
1: उत्कृष्ट माइलेज
2: राम्रो रिसेल मूल्य
1: टिकाऊ र भर पर्दो
2: अफरोड का लागि पनि उपयुक्त
1: BS6 तथा नया नया भर्सन बजार में लंच भइरहेको
2: सब उम्र समूह कर्मचारी तथा व्यावसायिक प्रयोजन का लागि पनि अति उपयोगी
1: हाम्रा सेवाहरू
2: ओखलढुंगा र खोटाङ को दिक्तल बजार बाटै फाइनेंस को सुविधा सहित हुंडा का सब मॉडल का मोटरसाइकिल तथा स्कूटर कंपनी के मूल्य में पाइने
1: जुनसुकी मॉडल का जेन्युइन पार्ट्स का साथ ही सर्विसिंग सेवा
2: एक्सचेंज गो सुविधा सहित मोटरसाइकिल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्विस सेवा निशुल्क दिइने
1: अनलाइन बाट बुकिंग गरी भुक्तानी गरेमा होम डेलिभरी को सुविधा समेत रहनेछ
2: ओखलढुंगा को लागि आधिकारिक विक्रेता होप मल्टीपर्पज सर्विस प्राली सिद्धिचरण नगरपालिका 11 गोरुमारी भुजानी ओखलढुंगा
1: सम्पर्क नम्बर 037590222 9852288002 र 9842803300

0: より、ご自身、先生の参考をお待ちしてください。
1: युनिटका बाटा बच्चों का बचाव यंत्रणी हिंसा सामाजिक अपराध हो बालबालिका यंत्रणी हिंसा को जोखिम में हो सक्षम हिंसा समय की असंतोष साथ है परिचित मौके बाद हो जैसे की बात हो सक्षम अभिभावक ने अपना छुराछुरी को व्यवहार से रखो बालबालिका को चाल चलन पानी बेहोरा अस्वाभाविक परिवर्तन आय को हो सक्षम इसके पहले उन्हें तत्काल कुरा कराओ बालबालिका सुबह नियमित संपर्क होने कराओ
2: आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में

0: बसंत को माया लुहावा चलता, सोला सत्र को उमेरमा जीवन को नहर चलता, कसे कसे ले तीतो मीठो याद दिए के होना है ना। हाँ ती याद नहीं हम कुछ में रुमान
1: छाया
2: सुन सुन।